मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस।

ए जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: and humanity unite the world.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
5: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Are you listening? Lyca Radio is now available across Birmingham on DAB.

0: Welcome to Laika Gold, as we bring you a whole hour of Navratri devotion every day at 9 a.m. Tune in and start your day with the blessings of Ma Durga. Navratri Hours, sponsored by Tilda. Tilda Basmati, at the heart of your family celebrations. Loved by generations since 1970.
1: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक भसुंडी।
0: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
2: अरे वो नहीं क्या हुआ?
1: कैसे पे हो तो यार?
0: और लाइफ बन गई हेवन।
3: भाभी डायन है।
0: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
4: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
0: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
4: आप सिर्फ मजे लो।

Good morning. स्वागत है श्रोताओं का संगीत की दुनिया में। भाई मनोरंजन कार्यक्रम लेकर आपका दोस्त स्टूडियो में पहुंच गया है। काजल जा चुकी है, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। मंगलवार वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 13 तारीख हो गई है आज बहनों भाइयों, और उसके साथ ही है आज तृतीय नवरात्रि, नवरात्रों की तृतीय तिथि, जब लोग मां शक्ति से, भवानी से कृपा मांगते हैं, दया मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, ऊर्जा मांगते हैं। परमपिता परमात्मा की शक्ति का नाम ही है भगवती दुर्गा, और बहन भाइयों वो मां का स्वरूप, वो पावर हाउस है जहां से हम सब एनर्जी लेते हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ भाई मां भगवती की प्रार्थना से ही करते हैं। अपने सभी श्रोताओं के लिए दुआएं और भाई प्रार्थनाएं करते हुए हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं, समृद्धि की और प्रगति की और खुशहाली की कामना करते हैं। जय माता की।

0: माता प्रकट हो, दूर संकट हो, हम सब के घरों में सुख शांति का प्रकाश हो।
1: If you're a company looking...
0: और भाई माँ भगवती की स्तुति से हमने मनोरंजन कार्यक्रम का शुभारंभ कर लिया है। ये गीत सुना है कि लिखा भी किशोर दा ने था और लता जी के साथ गाया भी किशोर कुमार ने। भाई गीत यानी भजन या भेंट कहिए आप इसे, अब इससे शुरुआत तो हो गई है लेकिन आगे आगे भाई आज किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आवाज काफी गूंजेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां भगवती के मां चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसी कारण वो चंद्र घंटा कहलाती हैं। उनका स्वरूप दो बातें सिखाता है, एक तो भाई शांति और करुणा और ममता, यानी चांद जो है शीतलता का प्रतीक है। दिन में कितनी भी गर्मी पड़ती हो, रात को जब चांद निकलता है तो पूरा वातावरण ठंडा शांत होने लगता है। भगवान शिव ने अपने घोर हलाहल विष यानी जहर को शांत करने के लिए मस्तक पर चंद्रमा धारण किया था। भाई शांति चाहिए, अमन चाहिए, चैन चाहिए, लेकिन चंद्र घंटा को सामान्यतः 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है। उनके हाथों में हथियार, अस्त्र शस्त्र और कमल जैसे प्रतीक दिखाई देते हैं। सिंह पर सवारी करती हैं, शेर की सवारी। भाव ये है कि भाई शांति की कामना करने वालों, अपने आप को किसी भी मुसीबत के सामने ताकत पूर्वक पूरी शक्ति से भाई तैयार रखना, भीतर साहस भी हो, सूझबूझ भी हो, यानी शक्ति भी हो और विनम्रता भी हो। अब है ना भाइयों, नवरात्रों की शुभकामनाएं देने के बाद मैं बता दूं आपको कि आज गीतों में किशोर दा के गीत गूंजेंगे। और मैं सोच रहा था कि अगर माँ भगवती की भेंट से प्रोग्राम शुरू करने की जो परंपरा मैंने कई बरसों से रखी है, अब किशोर दा तो भाई रोमांटिक गीत उन्होंने बहुत गाए हैं और चटपटे गीत अटपटे बहुत गाए हैं, छेड़खानी वाले, हंसी मजाक वाले, गंभीर गीत भी भाई उन्होंने गुनगुनाए हैं दूसरे और दर्द भरे गाए हैं। लेकिन मैं कहा ये धार्मिक गीत कहाँ से लाएं? अरे बहुत मिल गए साहब, किशोर कुमार गांगुली ने भजन भी

0: भाई इस गीत में किशोरदा की आवाज तो काफी आगे जाकर के आएगी, लेकिन किशोरदा भजन को भी अगर कॉमेडी में ढालना चाहे तो ये गुण भी उनमें था। वैसे फिल्म की सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो सकती है भाई जिसमें अगला गीत जो है वो शामिल हुआ, भाई दिखाई तो भजन ही पड़ता है।
1: Leica Radio, finalist in three nominations at the Asian Media Awards 2026.
0: गुणी जनो, भक्त जनो, भजन गाओ किशोरदा के साथ। अपनी हंसी को रोकना

और बहन भाइयों जय गोविंदम जय गोपालम भाई, भजन भी और कॉमेडी भी एक साथ और कभी कभी दर्द भी एक साथ भाई। आप बहुत सारे रंग आज देखेंगे किशोर दा के। बस आपको बता दें कि आज का पूरा प्रोग्राम बल्कि आज का दिन पूरा समर्पित है उस कलाकार को जिसकी आवाज में कभी प्रेम की मिठास थी तो कभी जुदाई की कसक, कभी हंसी के पटाखे, कभी जीवन का गहरा दर्शन। हाँ बहनों भाइयों, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की, जिनका मूल नाम था आभास कुमार गांगुली। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। कई बार अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते जब अपना परिचय देते थे, क्या अंदाज था साहब, आप सबको खंडवा वाले किशोर कुमार का नमस्कार। और उससे पहले वो मेरे चाचा चाचियो, मेरे ताऊ ताईयो, मेरे भाई भाभीयो, तो एक अंदाज था साहब। अगर मिल गया तो आज मैं प्रोग्राम में आपको सुनवाऊंगा। लेकिन किशोर दा सिर्फ सिंगर नहीं थे, बड़े तगड़े परफॉर्मर थे। स्टेज पर

0: हाथ पांव हिलाऊं तो कहीं स्वर से इधर उधर ना हो जाऊं, इस आशंका से मैं तो बस माइक के सामने सीधी खड़ी होकर आंखें बंद करके कभी कभी गाती हूं। और बात भी सही थी मेरी लता जी की भी, लेकिन किशोरदा एकदम डिफरेंट किस्म के गायक, कलाकार, परफॉर्मर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अरे साहब क्या क्या बताएं, उनका परिचय देने लगेंगे तो देर लगेगी, लेकिन आज तो देर है, हमारे पास समय है। अशोक कुमार के छोटे भाई, परिवार में भाई कला तो पहले से थी, जिक्र करेंगे बात करेंगे आज आभास कुमार गांगुली यानी किशोर दा की, लेकिन फिलहाल कुछ जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभाते चले।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे, भाई पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट अब भी अच्छा चल रहा है। आज का रेट मैं बता रहा हूं, एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में, भारतीय मुद्रा में, दे आर गिविंग 125.7 रुपीज, 125 रुपए 70 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: थई जाओ रेडी KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October

0: live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 p.m. at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
1: Fancy winning something tasty on the side?
2: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
1: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
2: So order your Pepe's flame-grilled, piri-piri, Pepe-licious flavour and you could win big.
1: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
3: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay, yeah, love you too.
4: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October, only on Jio Hotstar.
5: From King's Heath to Smethwick, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: इफ आई एम गोइंग आउट ऑन माय new paddleboard. The last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
8: Okay, help's on its way.
9: Grab my hand!
10: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
11: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
5: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
12: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है माँ की घंटी का नाद सुनाएं मन के सारे डर मिट जाएं माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी हर घर में सुख शांति छा जाए लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
0: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है स्टार टूर्स ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
5: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

किशोर कुमार जिनकी आज पुण्यतिथि है। और बहन भाइयों अकेले तो वो थे, लोग सोचते थे कि अशोक कुमार के भाई होने का उन्हें फायदा मिलेगा और भाई फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी आसानी से वो स्थापित हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि किशोर कुमार ने अपनी अलग से पहचान बनाई। किशोर कुमार मुंबई आए और साहब क्योंकि अशोक कुमार के छोटे भाई थे नेचुरी उनके पास आए और अशोक कुमार स्थापित थे, उनका नाम भी था, उनके परिवार में संगीत और अभिनय की एक परंपरा थी, एक माहौल था। लेकिन किशोर दा ने अपनी अलग पहचान, मौलिक प्रतिभा यानी ओरिजिनल टैलेंट, मेहनत और प्रयोगधर्मी एक्टिंग की बजाय गायकी से बनाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की लेकिन साहब संगीत से उनका गहरा लगाव था और वो सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं थे, वो एक्टर, संगीतकार, पटकथा लेखक, प्रोड्यूसर और गीत भी लिखे, उन्होंने गीतकार भी थे। उनकी प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधने को तैयार नहीं थी और साहब मुंबई में स्थापित हुए तो प्रशंसकों की भीड़ उनके साथ हो ली है। मुंबई में आए थे अकेले लेकिन जब दुनिया से विदा हुए तो कितनी आंखें नम कर गए। एक महान गायक कलाकार को इस दुनिया से कम कर गए जिनकी कमी आज भी महसूस हो।

0: यादों का मेला, यादों में बसे हैं किशोर। जानते हैं भैरव भाइयों, जब उनकी डेथ हुई थी किशोरदा की, हम एक पायरेट स्टेशन चलाते थे भाई, और महत्व उसका उतना ही था। सुनने वालों की संख्या बहुत थी, एडवर्टाइजमेंट्स भी थी, पैसा भी मिलता था। हालांकि कानून पीछा करता था, लेकिन वही कानून हमसे मदद भी लेता था। पुलिस को अगर कोई बात कम्युनिटी तक पहुंचानी होती थी तो वो सीना रेडियो पर, जिस पायरेट स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं भाई, उसी पर वो एडवाइज कराते थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: डेथ न्यूज, उनकी मृत्यु का समाचार मुझ तक पहुंचा था। वालों की तादाद बहुत बड़ी थी और किशोरदा में

0: हमारी टीम उन्होंने विदाई दी थी। उनके बारे में आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे उनके गीत चारों का भाई समाचारों में चर्चा है उस खबर की कि वो एक करते गए कम पड़ रही है बनाने के लिए, तो कह रहे हैं जेलों में जगह नहीं है तो उनको भी होटलों में रख लो। होटलों में आप भाई जैसे वो बोट में आए लोगों को रखते थे, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, जेल से जो है आज अगली खेप यानी अगली संख्या लोगों की, उन अपराधियों की जो सजा काट रहे थे जेल में जगह बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए उन्हें रिहा किया जा रहा है। और क्या है भाई, हम तो साउथ ईस्ट एशिया को ज्यादा कवर करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव गॉट इन द न्यूज टुडे। लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। भारत से खबर आई है कि दिवाली तक यूपीआई लेन देन पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने आज ये फैसला लिया है भारत में के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। भाई आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा, फिर दिवाली आ रही है, करवा चौथ, और ये एक त्योहारों की लंबी लिस्ट है। तो भाई इन दिनों में वो कहते हैं कि पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR जो है वो अभी नहीं लिया जाएगा, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। राहुल गांधी की याचिका यानी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने लौटा दी, कहा कि इसमें खामियां हैं, कमजोरियां, खामियां दूर करो फिर दाखिल कराइए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कल शाम सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की SIR को वो चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका में कुछ डिफेक्ट्स, कुछ त्रुटियां, गलतियां चिन्हित करते हुए उसे वापस कर दिया है। अब उनके वकीलों को ये गलतियां हटाकर ठीक करके याचिका दोबारा दाखिल करनी पड़ेगी। ज्ञानेश कुमार भाई जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, पूरा अपोजिशन और भाई मोदी विरोधी सब लोग जो है पीछे पड़े उनके, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन सब राजभवन तक मिलकर के मार्च निकाल रहे हैं। राजभवन भाई जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, हर स्टेट की कैपिटल में जहाँ गवर्नर निवास करते हैं उसे राजभवन कहते हैं। ये मार्च चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर के हो रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत मतभेदों को शांति से सुलझाने में भरोसा रखता है। दिल्ली में बिम्स्टेक के होम मिनिस्टर्स की पहली बैठक को केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज एड्रेस किया। अमित शाह ने कहा कि भारत ने हमेशा हर देश की सॉवरेंटी और इलाके की अखंडता को बनाए रखने का काम किया है। साथ ही कहा है कि भारत मतभेदों को, डिफरेंसेस को शांति से सुलझाने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि पहली बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की मीटिंग, होम मिनिस्टर्स की जो मीटिंग की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत गर्व यानी फख्र और सौभाग्य की बात है। बिम्स्टेक एक तरह से क्षेत्रीय एकीकरण, इलाके में मिलजुल करके आर्थिक सहयोग, सामूहिक यानी कंबाइंड सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पूंछ इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लैंडमाइन विस्फोट यानी धमाका हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल कश्मीर के सूचना विभाग ने दावा किया है कि भारत की ओर से एक लैंडमाइन में विस्फोट होने से 4 युवकों की जान गई है। बिल्कुल नजदीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक टिप्पणी करने के मामले में इंतरिम राहत दी है। अदालत ने आज उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अस्थाई यानी टेम्परेरी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है। मोदी जी ने यह बात आज दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को एड्रेस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के दौर में भारत में 500 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूबर्स यूजर्स हैं और 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। इतनी वैरायटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत में कुछ सौ स्टार्टअप ही हुआ करते थे, लेकिन अब देश में इनकी तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया है कि सरकार 2 चुनाव कमिश्नर्स पर यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दबाव बना रही है। ये कांग्रेस के नेता हैं भाई पवन खेड़ा, उनका कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को 2 भाई उप चुनाव आयुक्त यानी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो उनको डराया धमकाया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें बताया जा रहा है कि सरकार दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेशर बना रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं भाई, उन पर कहते हैं सरकार दबाव बना रही है। काकरोच जनता पार्टी के अभिजय दीपके ने विपक्ष के मार्च पर एक बयान जारी किया है। दीपके ने कल सोमवार को विपक्ष के मार्च के बाद रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि प्रदर्शन कौन करता है, सबसे अहम बात यह है कि हम नागरिक के तौर पर चुप नहीं हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इंटरनेशनल खबरों में किम जोंग से मुलाकात करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन और चीन शेंजेन के एपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कल पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो इस एशियाई दौरे के वक्त किम से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूं, एक रोमांचक मुलाकात होगी ये, मेरी उनसे बनती है। ईरानी प्रेसिडेंट ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात के बारे में एक बयान जारी किया है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के साथ हुई 7 घंटे की मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान देश को चलाने में आ रही प्रॉब्लम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंजेस हैं उन पर चर्चा की गई। प्रेसिडेंट ने ईरान में यूनिवर्सिटीज के उद्घाटन समारोह और एक नए एजुकेशनल सेशन की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव डॉक्टर मोहसिन रेजाई की फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत में दोनों नेताओं ने दोनों अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कई दूसरे मुद्दों पर इंटरनेशनल घटनाक्रमों पर चर्चा की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क पर आज हम किशोर दा के गीत सुनवाते भाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और किशोर कुमार की भाई गीतों में आगे, क्योंकि सब ने अपने अपने भाई चुने हुए हैं गीत, तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं 07-424-232323 पर। हम कोशिश करेंगे आपके मनपसंद गीत को शामिल करने के लिए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Yeah. Like our radio.
0: South. We have affordable Dubai offer combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flight with Emirates. कितने में? From just £629 per person में 3 nights travel by 10th of December. ये 10 दिसंबर से पहले पहले आपको यात्रा करनी होगी। South Hall Travel का number 0208-843-4444 or you can visit southhalltravel.co.uk.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
4: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
5: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
4: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
5: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
4: Sponsored by
5: Garg Solicitors, award-winning nationwide jewellers Diamond Heaven, ICNW Limited and SBI UK.
4: Radio partner, Leica Radio.
6: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11.
4: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11.
4: Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
9: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
10: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
9: Not with Simzy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
9: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
10: Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो
12: Catch Dil Chata Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
13: Shaadi karne ke liye kisi se pyar karna bahut zaruri hai. Tumhe kya lagta hai?
12: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/saff UK.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Popper Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chicky, Pot Meals and much more.
14: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.

0: सबसे निराला मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sandia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. From Yardley to Walsall. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
4: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
6: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica
7: Radio. और भाई Leica Gold पर आज का दिन, आज के प्रोग्राम्स, आज के गीत और संगीत समर्पित हैं स्वर्गीय किशोर दा को, किशोर कुमार, जिनकी 1987 में आज के दिन वही मृत्यु हुई थी, वो इस दुनिया से विदा हुए थे, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा हैं.

0: किसको देख करके किशोर दास सब कुछ भूल गए थे, कौन थी उनके जीवन की प्रियतमा और भाई कौन थी उनकी जीवन संगिनी। भाई उनके जीवन में कई महिलाओं के नाम जुड़े, उन्होंने चार शादियां की थी एक एक बारी बारी से एक साथ नहीं। तो भाई किशोर दा की पर्सनल जीवन में ताक झांक करेंगे हम अगले घंटे में, क्योंकि फिलहाल तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और बहनों भाइयों, अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो रेट्स नोट कीजिएगा LemFi की। एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में वो दे रहे हैं 126.08 रुपीस, अफगान अफगानी 86.02, पाकिस्तानी रुपए 366.82, बांग्लादेशी टके 163.48, श्रीलंकन रुपए 438.04 और मॉरिशन रुपए 63.11।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of, at the moment, kya rate chal raha hai sone ka? Per gram, can't find that. Okay, I'll catch it soon. Okay, जल्द बताएंगे आपको सुनते हैं।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: तो नोट कीजिए साहब, the gold is trading at the rate of 101.7 pounds per gram.
2: It's back, it's bigger and better.
3: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
3: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
3: For store bookings, call 07803 240580
2: or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो का प्रसारण है और लाइका रेडियो मिडलैंड्स, भाई हम जहां जहां तक अपने श्रोताओं के साथ जुड़े हैं सबको स्वागतम कहना चाहते हैं और हैप्पी नवरात्रास। आज नवरात्रों की तृतीय तिथि है, यानी तीसरा नवरात्रा। और भाई चिंतन के माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं सभी उपवासियों को जो व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, और भाई जो सेलिब्रेट कर रहे हैं गरबा डांडिया के माध्यम से, एंजॉय कीजिए। देखिए एंटरटेनमेंट भी, संगीत भी, पूजा भी, आस्था भी, विश्वास भी। आजकल एक नया ट्रेंड चला भजन जैमिंग का, और लोग जो है दूसरे अवगुणों से, कुरीतियों से, बुराइयों से दूर होकर के, नौजवान खासकर, अब भजन जैमिंग के साथ जुड़ करके अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा में भी रहते हैं और शक्ति के साथ साथ भक्ति का भी आनंद लेते हैं। आज के चिंतन में हमें कुछ संदेश मिले। एक तो भाई परमिंदर लखनपाल जी कहते हैं कि हम राधा कृष्ण मंदिर स्टैटफोर्ड में मां भगवती का गुणगान कर रहे हैं, चौकी का आयोजन करवा रहे हैं, आप आइए रवि जी। भाई लखनपाल जी, पहले तो आपको पोतरे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। घर में भगवान श्याम सुंदर का बाल रूप प्रकट हो गया है, तो रोहित को, आपके परिवार में सभी को, मुन्ने की दादी को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भाई आज नहीं आ सकेंगे क्योंकि आज हाउंसलो के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं और उसके होस्ट हमें तो हम खुद इनवाइट कर रहे हैं आपको। लेकिन जहां भी आप जा सके बहनों भाइयों, जहां भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे डांडिया के रूप में, गरबा के रूप में, चाहे माता की चौकी भजन कीर्तन के रूप में, सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थी नहीं है, परमार्थी हैं, सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तेरे पाणे सर्वत दपाला, यही सिखाया और यही आज के चिंतन में जिक्र होने जा रहा है। राधानाथ स्वामी एक बड़े प्रतिष्ठित संत है भाई हरे कृष्णा मूवमेंट के, उनसे जब भी भेंट होती है बहुत सुंदर बोलते हैं, बढ़िया संदेश देते हैं। कहते हैं हम दुनिया भर में घूमते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। कहते हैं हमने यहां देखा कि कई बार ना लोग जिस कंट्री में, जैसे ब्रिटेन में कुछ लोग आकर के बसे और वो दिन रात यहां की कल्चर को, यहां के लोगों को, यहां के पहनावे को, यहां के खान पान को कोसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, अगर यहां सब कुछ अच्छा नहीं है तो फिर भाई क्या कर रहे हैं आप यहां? प्यार कीजिए इस देश को, इसने आपको घर दिया है, धन दिया है, ठिकाना दिया है, इसने आपको अपना बनाया है, आप इस देश को अपना बनाइए। वो आगे से सवाल करते हैं, आपने बनाया? बिल्कुल बनाया। हम भाई जहां जन्म लेते हैं उस जन्म भूमि को कभी नहीं भूलते, लेकिन जहां जाकर के काम करते हैं उस देश के प्रति भी पूरी तरह से निष्ठावान, समर्पित रहते हैं। और ये हमारे भगवान ने हमें सिखाया है। राधानाथ जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया, जन्म भूमि को मत भूलो और कर्म भूमि को भी उतना ही सम्मान दो। तो बहनों भाइयों, ब्रिटेन हमारी कर्म भूमि है, कार्य क्षेत्र, भारत हमारी जन्म भूमि है, लेकिन पूरे विश्व में जहां भी जाके हम काम करेंगे उस देश के प्रति, वहां के लोगों के प्रति, वहां की कानून व्यवस्था के प्रति हम पूरा सम्मान व्यक्त करते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारा घर है, तो ब्रिटेन भी हमारा घर है। वो जो जन्मभूमि है उसने हमें जन्म दिया और यहां आकर के हमने कर्म किया, दोनों के प्रति हमारा सम्मान समर्पित है, हम आभारी हैं उस देश के भी और इस देश के भी, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह। जब उनसे पूछा गया कौन सी मां ज्यादा प्यारी है, जन्म देने वाली देवकी या जीवन देने वाली यशोदा,
1: फिर कन्हैया,
0: तो जवाब सुनिए।

0: हेरे कन्हैया किसको कहेगा तुमैया। भाई चिंतन में आज एक संदेश कि जन्म भूमि से प्यार करो लेकिन कर्म भूमि का भी सत्कार करो। वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम यहाँ बेनिफिट्स के लिए आए हैं, हम यहाँ कर्म करने और इस देश को कुछ देने के लिए भी आए हैं, सिर्फ लेने नहीं। आज का चिंतन, आज का विचार, धन्यवाद दे राधानाथ जी को जो हरे कृष्णा के अनुयायी और भाई बहुत अच्छा संदेश देते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में समझाते हुए। इसके साथ ही भाई तरुण गोड़ ने हाउंसलो से आज के चिंतन में योगदान दिया है। तरुण गोड़ भी यही संदेश देते हैं, कहते हैं हम इस देश से प्यार करते हैं तभी तो यहाँ रहते हैं, सिर्फ बेनिफिट से प्यार नहीं करते हैं। इस देश के प्रति समर्पित हैं हम, भगवान श्याम सुंदर ने हमें अपने जीवन से सिखाया है। चिंतन में शामिल गीत हमने भाई सुनवाया आपको, फिल्म छोटी बहू से किशोर दा की आवाज थी। आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप कुछ भी करें, चिंतन सुनाए, खबरें सुनाए, मेरा बस चलता तो मैं खबरें भी किशोर दा की आवाज में ढूंढ लाता लेकिन वो तो भाई हमें इस तरह से सुनानी पड़ी। लेकिन जो भी आगे आप सुनेंगे तो किशोर दा को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके गीत कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तरुण गौड़ जी आप याद दिला रहे हैं भाई आज नवरात्रे में, तीसरे नवरात्रे पर भी आपके हाउंसलों के मंदिर में माँ भगवती की चौकी पहले दिन में इस समय दोपहर में शुरू हो रही है और फिर शाम को भी 6 बजे के बाद आरती के साथ तो प्रसाद की वहाँ व्यवस्था, फलाहार की भी, लोग भोजन जो नहीं करते हैं मंदिरों में उनके लिए फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमें शालू कहती है कि वो बार्किंग में इलफोर्ड में दुर्गा मंदिर में हम कर रहे हैं माता की चौकी, आइएगा रवि जी, देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पहुंच पाते हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं शालू जी, नॉर्मल रोड पर आपके यहाँ भी आयोजन बहुत शानदार होते हैं। मेरा भाइयों चिंतन को समेटते हुए आइए लौटते एक बार फिर से किशोर दा के जीवन की ओर, पर उससे पहले SBI के पाउंड के मुकाबले भारतीय करेंसी में रुपए का रेट। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। और भाई जो लोग चिंतन को पसंद करते हैं और फिर तुरंत संदेश भेजते हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। कीर्ति जी, महेंद्र पटेल जी क्रोइडन वाले, जगदीश जी भूषी वाले, स्वीट कालड़ा, स्वीटी कालड़ा जी थैंक यू वेरी मच, विजय सटन वाले, निर्मला जी, रंजन, अर्जुन, नीला चौधरी, पम्मी सिंह, हरविंदर, जैस्मीन, प्रीति बेल्जियम से हमेशा सुनती हैं और बताती भी हैं कैसा लगा, भरत गंगाराम, गीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो स्वयं जो है चिंतन का या भाई स्मरण कराती हैं। और इसके अलावा भाई कुछ लोग जो नाम नहीं लिखते हैं उनका भी नाम ढूंढ के बताना पड़ता है। प्रज्ञा थैंक यू, वत्सला जी सो नाइस ऑफ यू, मानसी, मनु, जयश्री थैंक यू वेरी मच, जय माता दी आपको भी, आप इंदिरा गुजर सो नाइस ऑफ यू, और जयश्री हमारी पानीपुरी वाली उनको भी वो सुनती थैंक यू वेरी मच, राज, राम गुलाम ये तो भाई मॉरिशियन नाम लगता है हैप्पी नवरात्रि आपको भी, नैना शाह बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने नाम नहीं लिखा है पर आप AR से क्या मतलब हो सकता है, AR भाई पूरा नाम लिखेगा अच्छा लगेगा। और हमारे बैसन साहब हमेशा एक प्रेरणा की तरह हमारे साथ जुड़े रहते हैं, थैंक यू वेरी मच, कहते हैं कि आज और भी कई लोगों के जन्मदिन या उनके जीवन के महत्वपूर्ण दिन हैं तो उनका भी जिक्र कीजिएगा। देशराज बैसन साहब याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहर जी सो नाइस ऑफ यू, हिना जी, और आप भाई नाम प्लीज लिख दिया करें, वजाहत आशमी भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। आइए समेटते हैं चिंतन को।
1: चिंतन
2: SBI UK Money Talk.
1: send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, State Bank of India are giving 125.7 Indian rupees for £1, and that's maximum. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
2: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Annapurna Chakki Atta, 10 kilos, plus Foco Coconut Water, 1 litre, just $7.99. Master Chow Hakka Noodles, 140 grams, 5 for £1. Hira Mango Pulp, 850 grams, 2 for $2.79. Suhana Pickles, buy one, get one free. 1 kilo at $2.99 or 400 grams at $1.49. Dawat Extra Long Basmati Rice, 10 kilos, $15.99.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali!
4: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
2: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
6: Passports, tickets, kids' tablets.
7: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
6: And checking in with grandma.
7: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
6: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
6: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Holiday sorted.
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
3: Laika Radio.
4: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बैक टू बैक संगीत के तहत भाई दो गीत आपने सुने दोनों किशोर दा की आवाज में जैसा कि हमने कहा था कि आज किशोर दा का दिन है भाई किशोर दा का तो दिन है लेकिन बहुत बुरा दिन रहा था वो जब किशोर दा अचानक हमसे विदा हो गए थे और किशोर कुमार को एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम समर्पित किया था हमारे साथियों ने भी मैंने भी उस जमाने में 1987 में तब तक हमें लाइसेंस नहीं मिला था वहाँ और भाई एक पायरेट स्टेशन पर इतने हमें जो है लोगों के संदेश मिले थे रिस्पांस मिला था तो भाई किशोरदा बहुत लोकप्रिय कलाकार रहे अपने जीवन में और बहुत ही चर्चित भी रहे उनकी बहुत सारी बातें आज प्रोग्राम में शामिल करने को जी चाहता है लेकिन उससे पहले भाई आपको बता दें हमने पिछले घंटे में कहा था कि दिन जवानी के चार यार प्यार किए जा प्यार तो करें पर किससे करें किशोरदा कहते लव दाई नेबर पड़ोसन से करें नहीं किशोरदा कह रहे लव दाई नेबर बट डोंट गेट कॉट हंसने हंसाने के मामले में भाई किशोरदा जो है पूरे कॉमेडियन थे पर ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में दर्द भरे गीतों ने जगह ना बनाई हो वो भी बनाई और साहब कुछ गीत तो ऐसे कि वो वही गा सकते थे और किसी के न तो मुंह पे सजते ना आवाज पर सजते और किशोरदा के कुछ ऐसे गीत जो बहुत चर्चित हैं उनमें एक ये भी है
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स दिस इज लाइक अ रेडियो फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: C-A-T cat, cat mane billi, R-A-T rat, rat mane chuha, are dil hai tere panje mein to kya hua?
4: Hey, matey mad, mad mane pagal, B-O-Y boy. Boy mane ladka, re matlab iska tumko ho to kya hua?
3: C-A-T cat, cat mane billi, R-A-T rat, rat mane chuha, are dil hai tere panje mein to kya hua?
4: Hey, matey mad, mad mane pagal, B-O-Y boy.

GOAT goat, goat माने बकरी, LION lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

एक खास बात थी किशोर कुमार की आवाज में। वे एक ही गीत में शरारत, मासूमियत, दर्द और गहराई का रंग बदल सकते थे, और उनकी योडलिंग शैली ने तो भाई उन्हें और अलग पहचान दी। बाली भाई करके दिखाएंगे योडलिंग। वे कॉमेडी सॉन्ग्स में जितने सहज थे और भाई उतने ही वो भावुक गीतों में गंभीर और प्रभावशाली भी थे। किशोर कुमार की संगीत यात्रा में एस डी बर्मन, आर डी बर्मन जैसे संगीतकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा। गीतकार आनंद बख्शी, मजरूह सुल्तानपुरी और इंदीवर जैसे रचनाकारों के शब्दों को उन्होंने अपनी आवाज से अमर बना दिया। उन्होंने 8 बार फिल्म फेयर का बेस्ट मैन प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता। ये उनकी अचीवमेंट, उनकी गायकी की व्यापक लोकप्रियता, पॉपुलरिटी और उसका असर था। लेकिन किशोर दा की असली विरासत पुरस्कारों से कहीं बड़ी थी। प्रेम में भी भाई उनकी आवाज बड़ी सजती थी। रोमांटिक गीत उनके बहुत बढ़िया हैं। अब जरा जिक्र करें कि किशोर दा ने 4 शादियां की। किससे की, कौन कौन थी उसकी उनकी पत्नियां? भाई पहली पत्नी जो है उनकी, जिनसे उनके सुपुत्र जो है अपने अमित कुमार हैं, वो थी उनकी पहली पत्नी। और दूसरी पत्नी मधुबाला रूमा गुहा, फिर मधुबाला, तीसरी योगिता बाली, और चौथी जो उनकी पत्नी थी ना बहनों भाइयों, हैं वो अब भी हैं। उनके जीवन की भी एक कहानी है कि जो सबसे कम समय तक उनकी पत्नी जो है योगिता बाली रही, बड़ी जल्दी उनमें अलगाव हो गया था, लेकिन चारों पत्नियों में उनकी चौथी पत्नी जो है योगिता बाली से अलगाव के बाद उन्होंने शादी की लीना चंदावरकर के साथ। और क्योंकि इसका भी एक कारण है कि लीना चंदावरकर 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। शादी के कुछ ही समय बाद उनके पति से भाई एक कहते हैं कि गलती से गोली चल गई, रिवॉल्वर से वो उनकी मौत हो गई। और इस तरह से भाई वो बेवा का जीवन काट रही थी। कितनी उदास जिंदगी थी, मायूस जिंदगी थी। ऐसे में किशोर कुमार उनके न सिर्फ जीवन साथी बने, उनका सहारा बने, लेकिन वो भी भाई किशोर दा की जिंदगी में आकर के खिल उठी। और एक गीत खासकर हम लीना चंदावरकर के नाम उनके स्वर्गीय पतिदेव की ओर से प्रोग्राम में पहले भी शामिल करते रहे हैं। लीना उनसे उनके पुत्र पैदा हुए सुमित कुमार। 2 बेटे हैं उनके, अमित कुमार और सुमित कुमार। पहली पत्नी से अमित कुमार और चौथी यानी आखिरी पत्नी से जो उनकी अब भी भाई बेवा हैं,

0: The Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a Extra Podcast Update.
2: याद दिला दें आपको भाई, हमारा जो नया एपिसोड है लाइक एक्स्ट्रा पर उपलब्ध है, पॉडकास्ट नंबर एपिसोड नंबर 37 और इसका टाइटल है लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड, होस्टेड बाय सैंडी शाह। इसमें राज बदन हैं, दीप राजा हैं और विश भटनागर हैं। हमारी बहुत सारी अंदरूनी बातें खुल के सामने आएंगी, जरूर देखिएगा। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब और जो दूसरे भाई मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उन पर अवेलेबल है।
0: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो।

0: मुंबई आ पहुंचे। ये तो आप जानते ही कि भाई किशोर कुमार की पुण्यतिथि अशोक कुमार की जयंती होती है, उनका जन्मदिन। और अशोक कुमार ने इनकी मृत्यु पर कहा था कि मैं अब अपना जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। उनके रोमांटिक गीत याद आते हैं, किसी का दिल टूटता है तो उनकी आवाज सहारा देती है। दोस्तों की महफिल में उनके हास्य गीत माहौल बदल देते थे, और जब इंसान जीवन के बारे में गंभीरता से सोचता तो भी उनके गीत साथ खड़े नजर आते थे। सुलक्षणा पंडित अपने दोनों भाइयों के, भाई संगीतकारों के साथ ही एक बार मेरे घर रुकी थी, जतिन और ललित के साथ। उन्होंने बताई थी कि भाई किशोर उनके भी बहुत नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुलक्षणा पहले से संजीव कुमार से प्यार करती थी। ये फिल्मी कहानियां भाई बहुत सुनी देखी जानी, लेकिन ये मैंने सुलक्षणा पंडित के मुंह से सुना था, क्योंकि नहीं और उस पर जो है कैसे एक्सप्रेस करती थी वो अपने प्यार का जज्बा।
1: तुम्हारी सबसे आला ला ला ला ला, बात तुम्हारी रस का प्याला, अपना तो हाँ।

0: किशोर कुमार मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ें शामिल थी इस गीत में। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई एक ही दौर में इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, मुकेश जी, किशोर, रफी साहब, इन कलाकारों के आपसी रिश्ते कैसे थे। एक भाई जो होती है ना प्रोफेशनल कंपटीशन जो होता है, और उसमें कई बार जो है कलाकार दूसरे कलाकारों के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं।
1: Radio finalist in three nominations at the Asian Media Awards 2026.
0: और आपको बता दें बहनों भाई और रफी साहब और किशोर कुमार के रिश्ते कैसे थे जानना चाहते हैं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने कई गीत साथ साथ गाए और वो छाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया भाई किशोर कुमार के मामले में ये मशहूर है कि वो पेमेंट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, और अपने पैसे अगर गीत के भाई उन्हें ना पे किए जाएं तो वो प्रोड्यूसर का या भाई जिसके लिए गीत गाया है उसका जीना मुश्किल कर देते थे। आगे एक घटना ऐसी शामिल करेंगे, लेकिन एक ज़माना एक वक्त ऐसा आया, वो इमरजेंसी का दौर था शायद, श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और भाई इमरजेंसी के दौर में उनके बेटे संजय गांधी जो बहुत चर्चित थे अपनी क्या कहते हैं वो डिक्टेटोरियल बिहेव के कारण, वो जो उनकी तानाशाही लाइफ के बारे में मैं संजय गांधी को जितना जानता था कि वो एक तो समय के बड़े पाबंद थे। उन्होंने कहा कि मैं 11 बजे आपके शहर से गुजरूंगा और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। तो भाई हमारे दोस्त कृष्णमूर्ति हुड्डा उन दिनों यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जमा किया, देखा कि वो आए और दो लेट हो गए, वो लेट ही हो गए, वो मिल नहीं पाए। संजय गांधी की भाई उन दिनों के बर्ताव में एक घटना ये भी आई जब उनका किशोर से वास्ता पड़ा। संजय गांधी ने अपने एक कार्यक्रम के लिए किशोरदा को कहा भाई संदेश भेजा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए और गाइए। किशोर बोले भाई बगैर पैसे के तो नहीं गाऊंगा। लोगों ने समझाया भाई वो मिसेस गांधी के बेटे हैं, उभरते नेता हैं, बहुत पहुंच है उनकी, बहुत चलती है उनकी, बड़े गर्म मिजाज हैं, ये है वो है, बहुत कुछ कहा। पर किशोर ने कहा होंगे, हम भी किसी से कम नहीं, हम अपने फील्ड के शहनशाह हैं, आप उनसे कहिए कि पेमेंट भिजवाएं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं और फिर हमें बुलाएं, इज्जत से सम्मान से। ऐसे नहीं कह दिया कि भाई किशोरदा आइए और गाइए। जानते हैं उसका क्या असर हुआ बहनों भाइयों, किशोरदा ने नहीं गाया लेकिन संजय गांधी ने उनके गीतों पर आकाशवाणी में बजाए जाने को लेकर के पाबंदी लगवा दी। रेडियो पर किशोर की आवाज गायब हो गई और भाई डरते हुए कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में भी चांस देना बंद कर दिया। एक समय के लिए ऐसा लगा जैसे किशोर कुमार फिल्मी दुनिया से, संगीत जगत से गायब हो गए हैं, खो गए हैं कहीं। लेकिन साहब धीरे धीरे वक्त गुजरा, इमरजेंसी की समाप्ति पर मोहम्मद रफी साहब इस बात से बहुत दुखी थे और वो दिल्ली गए। वो काफ़ी निकट थे भाई कांग्रेस नेताओं के, और उन्होंने जाके सिफारिश की कि किशोर के बिना संगीत जगत अधूरा है, मेहरबानी करके ये पाबंदियां हटाइए। और मैंने भाइयों पाबंदियां हटी, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता चली कि उसके हटवाने में किसका हाथ था। बहुत बाद में पता चला कि रफ़ी साहब ने दिल्ली जा कर के ये पाबंदियां हटवाईं और फिर उसके बाद किशोरदा की आवाज लौट कर आई रेडियो पर, टीवी पर और फिल्मों में भी। ऐसे रिश्ते थे किशोर और रफी साहब के।

13 अक्टूबर 1987 13th of October 1987 संगीत जगत के लिए वो मनहूस दिन था जब किशोर कुमार हमेशा के लिए शांत हो गए। लेकिन बहनों भाइयों, आवाजें कभी नहीं मरती। मैंने कहा था ना, स्वर ईश्वर है। आवाजें शरीर के साथ विदा नहीं होती, वे पीढ़ियों के दिलों में जीवित रहती हैं। किशोरदा, आपकी आवाज को हमारा सलाम। उन्होंने 8 बार फिल्म फेयर का बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड जीता और यह अचीवमेंट उनकी गायकी की व्यापक लोकप्रियता यानी जो पॉपुलरिटी थी उसका असर है।

0: मोहम्मद रफी साहब और किशोरदा के रिश्ते कैसे थे, गीत बता रहा श्रद्धांजलि किशोरदा को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज का रेट बता रहे हैं भाई, एक पाउंड के बदले वो दिए जा रहे हैं कितने, 125.7 रुपीस, इंडियन रुपीस मैक्सिमम, 125 रुपए 70 पैसे का रेट चल रहा है। आप उनकी किसी भी ब्रांच में जाकर के ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर यू कैन यूज योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio. It's back. It's bigger and better.
3: ZTV and Like our radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
3: Join us on Sunday the 1st of

हूं शर्मिला टैगोर। आप जानते हैं शर्मिला टैगोर ने उस समय की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के साथ निकाह किया था और शर्मिला ने अपना नाम बदल लिया था भाई। बल क्या यूं कहिए भाई, उनकी ससुराल वालों ने उनका नाम बदल दिया था। क्या नाम था शर्मिला टैगोर का शादी के बाद?

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज्ड गीत।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: किशोरदा के बारे में भाई दिल की बात जुबान पर लाना मुश्किल है, लेकिन किशोर के स्वर प्रेमियों से ये राज छुपाना मुश्किल है। तो दिल की बात कह दें।

0: किशोर कुमार सदाबहार एक गायक कलाकार
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाई कुछ एक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सामने स्क्रीन पर हैं एक तो ये कि लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल फॉर थ्री ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बीइंग स्क्रीनड एट अ शोकेस सिनेमा नियर यू Watch. कभी कभी on Sunday 11th of October that's gone. हाँ लेकिन भाई जिन्होंने देखी उनको बधाई दे देते हैं. एक फिल्म जो है 18 अक्टूबर को अब दिखाई जा रही है दिल चाहता है Sunday 18 अक्टूबर को तो जरूर देखिए. Book your tickets at showcasecinema.co.uk/SAFFUK SAFUK यानी South East साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल तो साहब ये सूचना हमें आप तक पहुंचानी थी और भी है कोई सूचना हाँ है ना ध्यान से देखो एक सूचना और भी है और वो हम आगे चल के बताएंगे आपको बस देखते रहिए सुनते रहिएगा एक गीत और भाई सुनवाते हैं आपको किशोर दा की आवाज में लोग कहते हैं कि किशोर दा ने बड़े चटपटे गीत गाए रोमांटिक गीत गाए गंभीर गीत भी गाए लेकिन कोई दर्द भरा गीत सुनना हो तो कहते हैं मुकेश याद आते हैं ठीक कहते हैं आप भाई रफी साहब ने भी कुछ दर्द भरे गीत गुनगुनाए पर थर्सडे के कार्यक्रम में जबकि मैं सैड सॉन्ग सुनवाता हूं कहते हैं बहुत ज्यादा गीत आपने किशोरदा की आवाज में नहीं सुनवाए ऐसी बात नहीं है भाई जो खूब खुश रहते हैं और खुश रखते हैं उनकी जिंदगी में भी दर्द होता है यकीन नहीं आता तो अगला गीत सुनिए कितना दर्द एक्सप्रेस करते थे किशोरदा ये है
1: लाइका रेडियो

खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं ऐसा कौन है जो दुख से बचा हो ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में दर्द भरा संगीत ना बजा हो

0: Manu Ranjan with Ravi Sharma.
1: और बहना भाई एक चीज हमने भी किशोरदास से सीखी क्या भाई यारी दोस्ती अपनी जगह पर पेमेंट की अदायगी अपनी जगह है पैसे पहले काम बाद में
2: रूप का तुम हो खजाना तुम हो मेरी जान ये माना

0: I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work that way. Even a quick reply affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
2: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
3: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
4: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मस्ती की धुन में।
1: हर एक सिंगर की क्वालिटी जब बताई जाती है उसमें से किशोर दा प्लस वन हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि योडलिंग दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था। यस ही केम अव्वल नंबर व्हेन ही केम डाउन टू योडलिंग। एंड सुरेश जी बैठे हैं यहाँ पे, एज सून एज फर्स्ट टू नोट्स गाने की शुरू होती है ही नोज पूरा गाना, इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। और एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी, मेरे जीवन साथी, ही सेट चला जाता हूँ, मान गए सुरेश जी।
2: Feel good track brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Padden weekdays at 4 p.m. Like Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
4: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.

0: pass on!
1: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
3: नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
5: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Yes, you are right. Because आशा जी ने गलती की थी. हाँ, वो एंट्री मारने की कोशिश कर रही थी और उनकी गलत एंट्री थी. किशोर दा ने मुंह पे हाथ रख दिया और स्क्रीन पे भी ऐसे ही किया. उन्होंने चांद उस्मानी जो हीरोइन थी उसके ऊपर भी ऐसे हाथ रख दिया. एंड वो गलती आज तक नजर आती है. This was one of those stories of Kishore Kumar. There's another beautiful story somebody has shared with me. I will share it with you.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: One, two, three, four.
1: अब एस से खत्म होता है एंड मैं दो गाने आपको सुनाता हूं, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जिन्होंने साथ में गाया। कल से टी से शुरू करेंगे हम किशोर कुमार।
2: कहीं से ऊंची कहीं से नीची, सड़क जमाने की संभल के संभल के संभल के चलना।

लाख फूल दो चार, कांटे लाख फूल दो चार। सोच समझ के करना बाबू किस दुनिया से प्यार, बाबू किस दुनिया।

अकड़ अकड़ के बाबू जीना अकड़ अकड़ के। अरे झुका तो दुनिया चित कर देगी गर्दन तेरी पकड़ के, हो बाबू गर्दन तेरी पकड़ के, कान के सीना

0: छेड़ के तरह न है ये सारा ही जबान तेरी महफिल।
1: अरे काहे तू चले है तेरे कदम तले है तेरी मंजिल।
0: छेड़ के तरह न है ये सारा ही जबान तेरी महफिल।
1: सुन प्यारे कहो प्यारे मत वाले
2: जाने तो खुशी का राग दुनिया है।

0: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
3: Nothing like a good run at the coast, but I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic, float to live. Head back, breathe and relax.
4: Coast Guard,
5: someone's in trouble in the water.
4: Okay, help's on its way.
3: Yuria. Floating saved my life.
5: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
2: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
6: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
8: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ likearadio.com ਤੇ Alexa play Laika Radio Punjabi Punjabi from Yardley to Walsall. Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full scale DAB. This is Laika Radio Midlands.
1: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: डायमंड ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय मलाबार गोल्ड।

0: Easy listening with Radio Wally. Leica Radio. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
1: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
2: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for $11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for $3.50. Falcon Broken Cashew Nuts 600 grams, just $2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea 1 kilo, $3.99.
1: Or shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlett's Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
3: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक भसुंडी।
4: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
3: अरे वही नहीं? क्या हुआ? किसी में हो तो क्या?
4: और लाइफ बन गई हेवन।
5: भाभी डायन है।
4: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
6: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
1: नई नवेली, starring यामी गौतम धार, produced by आनंद एल राय। नई नवेली in cinemas October 16.
6: आप सिर्फ मजे लो।
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग रागसन
7: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर हॉलिडे Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
0: From King's Heath to Smethwick, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
11: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी हर घर में सुख शांति छा जाए लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
1: Navratri special on Leica, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
7: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this cracker classic.